0: गड्ढा जो शास्त्रीय तरीके से जो एक्सकेवेशन करने वाले हैं पुरातत्व शास्त्री वो करते हैं, ऐसे करीब 19 ट्रेंचेस इस पूरी जगह पे ये जो उत्खनन शुरू हुआ उसमें किए गए, जहां पे अलग अलग चीजें मिली हैं। जो मेरे हाथ में है अभी ये पुराने टेराकोटा बर्तन के पीसेस हैं, यही पे मिले हैं जहां पे ये ट्रेंच है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली चीज ये है, ये बड़ा बर्तन, वॉल्यूम देखिए आप, और ये बड़ा बर्तन शायद अनाज रखने के लिए या फिर और कोई चीज रखने के लिए यहाँ पे होगा। और इसी तरीके बर्तन जो डिजाइन या फिर उसका टेक्सचर है उससे ही अंदाजा अभी तक लगाया गया है कि ये करीब 5वीं शताब्दी में होंगे, करीब 1500 साल पुराने। ये बर्तन पूरा टूटा हुआ था, इसको पूरी तरीके से रिकवर किया गया और उस शेप में लाया गया है जिस शेप में उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस इलाके में मिली एक और इमारत ने सबको हैरान कर दिया है, वो है ये पानी से भरने वाली स्टेप वेल। इसे बावड़ी या कुआ भी कह सकते हैं। ये खारे पानी से घिरे इस आइलैंड पर ताजे पानी का एक जरूरी जरिया था।
1: वाटर रिजर्वायर
2: में हम इसे पानी के लिए बनाया गया स्टेपवेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये साफ तौर पर ताजे पानी का एक जरिया है। हमें लगता है कि वह जो भी पत्थर और ईंटों से बनी है वह देसी या इस आइलैंड की नहीं है, उन्हें कहीं बाहर से मंगवाया गया है। इसका मतलब है कि ये पत्थर यहाँ नहीं मिलता और यहाँ ईंट पकाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यहाँ मिट्टी का इतना जमाव नहीं है कि लोग यहाँ ईंटें बनाते, ज्यादातर वह बाहर से आए होंगे। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि यहाँ व्यापार होता था तो लोग व्यापार के लिए आते थे, लोग यहाँ रहते थे, उन्हें ताजा पानी या मीठे पानी की जरूरत होती होगी। और क्योंकि इस आइलैंड पर पीने के पानी की समस्या है क्योंकि आप पूरी तरह से समुद्र से घिरे हुए हैं, तो यहाँ कई कुएं हैं जिनका इस्तेमाल आज भी लोग करते हैं। तो हमें लगता है कि हमने जो तारीख, सिक्के और इसकी पुरानी जानकारी दी है इसके आधार पर ये 1500 साल पुराना होगा और जब व्यापार चल रहा था तो इसका इस्तेमाल लोगों की प्यास बुझाने के लिए किया जाता था। उस समय इतना खर्च करके यहाँ एक कुआं बनाया गया था, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय यहाँ कितना बड़ा व्यापार रहा होगा।
0: एलिफेंटा द्वीप की एक और खोज जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया है ये वो है 3री सदी से 5वीं सदी के दौरान लिखे गए ये दो पुराने ताम्रपत्र।
3: जब मिट्टी में दब गए इन बड़े मिट्टी के बर्तनों को हमने साफ करना शुरू किया तब हमें कुछ अहम सबूत हाथ लगे, वह थे ये दो ताम्रपत्र। किसी भी खुदाई के दौरान एक भी ताम्रपत्र मिलना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, मगर यहाँ एक नहीं दो ताम्रपत्र मिले हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ताम्रपत्र अलग अलग राजवंशों के हैं। यह मुंबई के इतिहास के लिए बहुत ही अहम बात है।
4: आणि मुंबई करता फार मोठा कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: इनमें से एक ताम्रपत्र पश्चिम भारत के त्रैकुटक राजवंश का है जिसमें महाराजा इंद्रसेन के किए गए दान का उल्लेख है, और दूसरा ताम्रपत्र जिसे अभी पढ़ा जाना बाकी है वो गुजरात के नवसारी के चालुक्य राजाओं का है। इस खुदाई में इस स्टेपवेल के अलावा कई आर्कियोलॉजिकल सबूत मिले हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि घारापुरी आइलैंड पर किस समय किसने राज किया था या किन देशों और साम्राज्यों के व्यापारी यहां आया करते थे। इनमें सबसे जरूरी सबूत है सिक्के यानी कॉइन्स। यहां 3री-4थी सदी के कार्दमक क्षत्रप वंश से लेकर 3री-7वीं सदी के ईरान के ससेनियन राजाओं के समय तक के कई सिक्के मिले हैं। सिक्कों के साथ मिला एक और आर्कियोलॉजिकल सबूत है मिट्टी के बर्तन। घारापुरी आइलैंड पर कई देशों के मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
5: अगर आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 4थी-5वीं सदी के या 5वीं-6ठी सदी से लेकर 11वीं सदी के बर्तन मिल रहे हैं, यानी नॉर्थ अफ्रीका, मेडिटेरेनियन खाड़ी, ईरान वगैरह से, तो इसका मतलब है कि एलिफेंटा का पोर्ट करीब 600 से 700 सालों तक बहुत एक्टिव था और इस पोर्ट के जरिए विदेश से आने वाला सामान पोर्ट पर उतारा जाता था और फिर वहां से शायद छोटी नाव में उन्हें ठाड़े की खाड़ी या दूसरे इलाकों में ले जाया जाता था।
0: खुदाई की मिट्टी को छानने पर पत्थर या मिट्टी के मोती मिलते हैं। उन मोतियों की यहाँ तक पहुँचने की यात्रा को भी संशोधन के जरिए समझा जा सकता है।
6: हमारे पास 5 लोकेलिटीज थी, तो हमारे पास जो 5वीं लोकेलिटी थी वहाँ पे हमको बहुत क्वांटिटी में

0: कई सारे बीड्स मिले, ये है नेफ्राइट। सबसे क्लोजेस्ट अगर हमको नेफ्राइट मिलता है कहीं तो दैट इज बर्मा या तो ओमान।
1: असल में जो चीजें हमें वहाँ मिली वे वहाँ बनी नहीं थी, जो भी वहाँ है वे सब घारापुरी में लाई गई थी, तो शायद उन्हें वहाँ लाया जाता था और बाकी जो सामग्री बाहर से आती थी उसे भी निर्यात कर दिया जाता था, यानी बेचा जाता था या बदले में इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब था कि आप हमें ये दो और हम आपको वो देंगे।
2: तो अगर एलिफंटा एक बंदरगाह था जो तीसरी से चौथी सदी तक फला फूला, तो उस समय वहाँ कौन कौन से शहर और व्यापारिक केंद्र थे? उस समय ठाणे जो शिलाहार साम्राज्य के दौरान राजधानी थी, या कल्याण, रेवदंडा, चौल जैसे कई महत्वपूर्ण स्थान आसपास थे। संशोधक बताते हैं कि इसके अलावा यहाँ आने वाला सामान मध्य भारत के कई दूसरे स्थानों पर भी जाता था। इस खुदाई की वजह से मुंबई के आसपास के इलाके का इतिहास और भी पीछे चला गया है। लेकिन ये खोज यही नहीं रुकती। एलिफंटा द्वीप पर अभी भी कई पुरातात्विक रहस्य हैं जो भविष्य में नई खुदाई सामने लाएंगे। मयूरेश कोंडनूर, बीबीसी न्यूज, मुंबई।
3: एलिफेंटा केव्स की यह खुदाई जी है जी, ये पुराने कई रहस्य जड़े हूँ खोलती पी है, तो किस तरीके का जीवन जाच उस टाइम दे रही होएगी जिद तो ये काफ़ी चीज़ा पता लगदियाँ। इतिहासकार कह लो या जड़े खुदाई करने वाले लोग ने, ये अपने अपने लैवल उत्ते कुछ ना कुछ इदा का कट के लिया रेंगे जिद थोड़ी हैरानी जी दी जाती है। सो ये कुछ गल्लांबात अज के प्रोग्राम चल रही जी, हले होर भी गल्लांबात जिहड़ियां शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम तुसीं मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, फ्राइडे शाम नूं 7-8 ते संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक सुनते हो। सो प्रोग्राम च अगे वधण तों पहले एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक लैंदे आ, ते ब्रेक तो बाद फिर अपनी गल्लांबात जिहड़ियां इसे तरीके नाल जारी रखांगे। सबरंग रेडियो 94.7
4: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करदा है।
5: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नूं कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
4: हुण तुसीं उहनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो, ताकि तुसीं घर वर्गा एहसास महसूस करो।
5: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
4: कॉल करो 5873606890 लाइफ लाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
5: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते, या कॉल करो 5873606890।
4: थोड़े परिवार की सेहत साड़ी जिम्मेदारी।

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा, लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो, रेडियो सब रंग 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement.
5: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ

0: ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
1: Ich bin nicht der einzige Mensch.
2: मैं इकलौती नहीं हूँ, पता है मुझे, लेकिन अभी इस पल मुझे लग रहा है कि पूरे दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेला महसूस करती है। जैसे मैंने अभी खिड़की से देखा कि इतने सारे जवान लोग आज रात बाहर जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी यही सब दिखता है। अब वीकेंड है तो जाहिर है कि लोग अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं, और मैं अभी घर में बैठी अपने ही शरीर से जूझ रही हूँ।
3: ऐसा लगता है जैसे मेरी गाड़ी के पहिए फंस गए हैं। मैं रेस दे रहा हूँ मगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। ये बिल्कुल मेरे डिप्रेशन जैसा है। मैं मौजूद हूँ लेकिन चीजों का हिस्सा नहीं हूँ, इससे मुझे बहुत अकेला महसूस होता है।
4: Das macht mich sehr einsam.
5: मुझे लगता था कि मैं थोड़ी अजीब हूँ, अलग थलग रहने वाली। मैं क्लास में हमेशा अकेले बैठती थी, किसी से बात नहीं करती थी। मुझे लगता था, पता नहीं, कि शायद मैं लोगों को बहुत अजीब लगती होंगी।
6: मुझे अकेलापन बहुत बेचैन करता है। मैं अभी भी इसमें कोई सुपर पावर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। उदासी या निराशा या गुस्सा, ये कम से कम आपको आगे बढ़ने की वजह तो देते हैं, लेकिन अकेलेपन को लेकर मुझे अभी तक कोई वजह नहीं मिली है।
7: Das Ding.
8: Exit Einsamkeit.
9: Wir sprechen ab jetzt hier bei Das Ding über ein Thema, was noch irgendwie viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, und zwar einsam sein, Einsamkeit. Aber vor allem sprechen wir auch mit euch.
10: Was mich am meisten einsam fühlen lässt, ist einfach diese emotionale Distanz, die ich oft so verspüre in der Gesellschaft.
11: Das ist so eine ganz starke Schwere, die auf einem lastet.
12: Einsam möchte keiner sein, hat sowas von einem Makel. Aber wir sind viele.

0: मुझे थोड़ा डर है कि कुछ ऐसी बातें उठेंगी जो मुझे उदास कर सकती हैं। ये मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो हाँ, इससे कुछ पुराने जख्म ताज़ा हो सकते हैं या कुछ ट्रिगर हो सकता है।
1: Like, this is better than winning the lottery. You can manifest so much more. No one gives a shit. Do you want us to feel sorry for you? I'm not going to feel sorry for you.
0: मैं रोज उन यूट्यूबर्स की वीडियोस देखती हूँ जो मैनिफेस्टेशन पर बात करते हैं। मैं हमेशा उनकी बातें सुनती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि इससे आपको ताकत का एहसास होता है कि आप अपनी हकीकत खुद रच रहे हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी या किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। हर रोज मैं खुद तय करती हूँ कि मैं कौन हूँ। इससे मुझे हौसला मिलता है।
1: You're still acting like a little entitled brat.
0: Hi, मैं वैनलिन हूँ। मैं 34 साल की हूँ। मेरी राशि मिथुन है और मैं ट्रेन्ड एक्ट्रेस, होस्ट, वॉइस आर्टिस्ट, मेंटल कोच, फोटोग्राफर, लेक्चरर और मॉडल हूँ। अलेक्जेंड्रिया और मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। हम अपना दिन शुरू कर रहे हैं थोड़ी स्ट्रेचिंग और एक खास जूस के साथ जो जौ की पत्तियों, सेलरी, खीरे और कोलेजन से बना है। ये मेरी त्वचा को अंदर से टाइट करेगा। मुझे गाना गाना भी पसंद है, खासकर मेटल, हैवी मेटल नहीं, मेटल कोर जैसा कुछ। मैं खुद को पीड़ित बिल्कुल नहीं समझती हूँ, बल्कि मैं खुद को मेन कैरेक्टर मानती हूँ। किसी के ऊपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरा अपना वजूद है, एक दायरा जिसे मैं साथ लेकर चलती हूँ। लोग कहते हैं कि क्या मतलब कि तुम ठीक नहीं हो, सब तो बढ़िया है, अच्छी खासी नौकरी है, तुम दिखती अच्छी हो, तुम्हारे पास इतना कुछ है। वो तमाम चीजें गिनवाते हैं जो मेरे पास हैं और मैं बस कह देती हूँ कि हाँ शुक्रिया, मगर फिर वो आपसे

0: बुरा लगने का या कभी कभी अकेला महसूस करने का हक छीन लेते हैं। मैं जो चाहूँ वो सब हासिल करती हूँ, मैं जो चाहूँ वो सब हासिल करती हूँ। मैं रोड़ा बनने वाली हर चीज पीछे छोड़ देती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी रह सकती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी रह सकती हूँ। मैं पॉपुलर हूँ, मुझे प्यार मिलता है और मैं सुरक्षित हूँ। आई लव यू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। थैंक यू, प्लीज। मैं जो चाहूँ वो सब हासिल करती हूँ। बहुत बढ़िया। 0 से 10 के पैमाने पर मेरा अकेलापन 11 पर है। क्या आप इस टावर के साथ मेरी फोटो खींच देंगे? यहाँ पर। हटो भी। थैंक यू, बाय। इंस्टाग्राम के साथ मेरा खट्टा मीठा रिश्ता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं वहाँ खुलकर अपनी बात कह सकती हूँ, पर ये थकाव भी हो जाता है जब फोमो होने लगे, चिंता हो कि मैं कम पोस्ट तो नहीं कर रही हूँ। बेसिकली मुझे हमेशा अकेला महसूस होता है। इसका सबसे ज्यादा असर मेरी निजी जिंदगी पर पड़ता है। काम के दौरान मुझे इस बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता है, लेकिन वो एहसास हमेशा रहता है। मैं हर काम में पूरी जान लगाती हूँ, शायद इसीलिए अकेले होने पर अकेलापन और ज्यादा सालता है। जैसे कोई बीच बॉल जिसे आप पानी में नीचे धकेलते हैं, फिर वो उछल कर ऊपर आ जाती है। इसीलिए मेरी निजी जिंदगी में ये इतनी गहराई से महसूस होता है कि कभी कभी तो लगता है कि मुझे प्राइवेट लाइफ चाहिए ही नहीं।
1: एक सेकंड, मुझे बस एक चीज और करनी है। हो गया, ये ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
0: अगर आपने कभी ये महसूस नहीं किया है तो इसे समझना मुश्किल है। इसे खालीपन, उदासी या घुटन कह सकते हैं। ये सही है, लेकिन ये शब्द तह तक नहीं जाते हैं।
1: हो गया,
0: बहुत खूब, वाह। मैं थोड़ी सी वर्कहॉलिक हूँ, फिर काम खत्म होने पर सब खाली खाली लगता है। मेरे ख्याल से आप इसे काली साए की तरह स्वीकार कर लेते हैं जो कार में आपके साथ सफर कर रहा है। आप उसे बाहर नहीं कर सकते, वो सीट बेल्ट लगाए वहीं बैठा है। मैं तो चाहती हूँ कि इसे निकाल फेंकूं और ये कभी वापस ना आए।
2: Sonntage sind so die मिट्टी schlimmsten Tage, weil
3: संडे मेरे लिए सबसे मुश्किल दिन होते हैं, क्योंकि सब कुछ और धीमा हो जाता है। ऊपर से मेरे दिमाग में जो इमेज है, दूसरे कपल्स और परिवार साथ में संडे बिता रहे हैं, और मुझे एहसास होता है कि मैं तो ज्यादातर अकेला होता हूँ, बिल्कुल तन्हा।
2: Angekommen bin ich noch gar nicht, obwohl ich jetzt fast 4 Jahre da bin.
3: मुझे अब भी नहीं लगता है कि मैं यहाँ का हो पाया हूँ, जबकि मुझे आए 4 साल हो चुके हैं। मेंटेलिटी यकीनन एक वजह है। यहाँ की स्थानीय बोली में तो बाहरी लोगों के लिए एक शब्द भी है। ये इस जगह के बारे में बहुत कुछ बताता है। मैं 2021 में अपनी नौकरी के लिए स्टुटगार्ट आया था। मेरा पुराना बेस्ट फ्रेंड सालों से यहाँ रह रहा था, तो इस शहर से मेरा एक कनेक्शन था। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो रिश्ता जितनी एनर्जी दे रहा था, उससे ज्यादा ले रहा था। मुझे लगता है कि महिलाएं आपस में खुलकर बात कर पाती हैं और अकेलेपन जैसे पेचीदा जज्बात शेयर कर पाती हैं, लेकिन मर्दों के लिए ये मुश्किल होता है। अगर मैं और मेरा पुराना दोस्त अब भी दोस्त होते तो ऐसा नहीं होता कि हम

0: हम दोनों आपस में गले लगकर रो सकते थे क्योंकि फिर लोग आपके रिश्ते को गलत ढंग से देखने लगते हैं। कहीं ये समलैंगिक तो नहीं है, जो बिल्कुल बकवास है।
1: घर लौटने के बाद से ये बिल्कुल आम सा संडे है।
0: सच कहूँ तो मेरा भाई ही मेरा परिवार है। मुझे अपने पेरेंट्स या दादा दादी से कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता है। ये एहसास होना कि मेरे पास कोई है जिससे मैं अपनी बात कह सकता हूँ, बहुत सुकून देता है। अकेलापन तब बहुत खतरनाक हो जाता है जब आप अपनी चार दीवारी में बंद हों और आपकी बात सुनने के लिए कोई ना हो। अकेलापन मुझे अपनी एक खामी जैसा लगता है। मैं 33 साल का हूँ, ना मेरे बच्चे हैं और ना कोई रिलेशनशिप। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे पास ये सब नहीं है। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझ में क्या खराबी है।
2: मुझे अकेलेपन का एहसास पहली बार तब हुआ जब मेरा ईटिंग डिसऑर्डर शुरू हुआ। मुझे अपना शरीर पसंद है और मुझे पता है कि मैं हेल्दी दिखती हूँ। मैं ना तो बहुत मोटी हूँ और ना ही बहुत पतली। मुझे मेरे लंबे पैर पसंद हैं। मुझे अपने बाल और आँखें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब मैं शीशे में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बाहें बहुत मोटी हैं या गर्मियों में मेरी जांघें आपस में रगड़ती हैं तो मुझे दर्द होता है। मेरे लिए इस सच का सामना करना अभी भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि काश मैं जैसी अभी हूँ उससे अलग दिखती। सॉरी। मुझे सादे कपड़े पहनना पसंद है। मुझे मर्दाना ढंग से तैयार होना पसंद है, जैसे कपड़े लड़के पहनते हैं। कॉट बुस में लोग अक्सर मुझे अजीब ढंग से देखते हैं।
1: क्या कमाल के इयररिंग है।
2: शुक्रिया।
1: हे भगवान।
2: अकेलापन नाकामी जैसा महसूस होता है। शायद इसलिए क्योंकि मुझे अकेले होने पर शर्म आती है और ऐसा लगता है जैसे मुझे अपने दोस्तों की कद्र नहीं है। पता नहीं क्यों लोग मुझे अक्सर ऐसे देखते थे कि मैं जैसी हूँ ठीक नहीं हूँ, तो मैंने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया। खासकर तब जब मुझे समझ नहीं आता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं पहले जानने की कोशिश करती थी कि क्या मैं जैसी हूँ वैसी यहाँ रह सकती हूँ या नहीं। तुम कब तक हो यहाँ पर? मैं बस थोड़ी देर में निकलने वाली थी।
0: यहाँ तक किसी ने आग वाग लगाने की।
3: अकेलापन जेड़ा है जी, कल्लापन जिन्हों कहने आपां, ते ये बड़ा खतरनाक बीमारी होंदी है बेसिकली। क्योंकि वैसे तो कहंदे ने भी जेड़े चंगे लोकी ने वह कल्ले रह के ज्यादा खुश होंदे ने, ज्यादा तरक्की करदे या सब कुछ काम कर लेंदे। लोकी अपने अपने शौक पालदे आ कल्ले रह के ते बाकी चीजां करदे, बट जेड़े नौजवान ने ये कल्ले रहन ते बड़ी दिक्कत वाला काम जेड़ा उन्हां वास्ते हुंदा जा रहा। सो तुसी सुनिया दो तीन स्टोरीज कट्ठियां कि भी किस तरीके दे नाल लोकी जेड़े अजकल दे दौर दे विच बच्चियां दे नाल भी हो रहा है, या यंग जनरेशन जेड़ी है ना तो किस तरह डिफिकल्टी दे विच जा रही है। ताडे इर्द गिर्द भी कोई ना कोई नौजवान बच्चे वड्डे जेड़े है वक्रे वक्रे उमरां दे लोकी तुसी सुनिया उन्हां दी इन्ना कुछ काम कर करन दे बावजूद भी जदों वेले या कल्ले महसूस करदे ने, क्योंकि अजकल जिहड़ा सोशल मीडिया के उत्ते जां दूजे चीजां देखदे आं छोटी छोटी चीज़ के उत्ते सानूं जिहड़ा वो डोपामाइन बड़ी क्विकली मिलता है। छोटी जी रील देखी तो नाल ही बंदा खुश हो जाता, छोटा जिहा कोई चीज़ आई तो बंदे नूं खुशी मिलती है, या लेडी नूं या किसी नूं भी, मतलब इंसान नूं, आई मीन टू से। सो इन्हां नूं ठीक करन वास्ते कि यह भी आपां नूं थोड़ी देर वास्ते बोर होना भी जरूरी है। जदों तक तुसीं बोर नहीं होंदे, बोरियत कहिंदे वधिया चीज़ है, इट्स नॉट बैड, क्योंकि जदों तक तुसीं बोर नहीं होंदे ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ

0: ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੌਕੇ।
1: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ, ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0303-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
2: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
3: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
2: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
3: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
2: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
3: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
2: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर, या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
3: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
4: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
5: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhta hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat het immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde han. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillo, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
6: Regulated Canadian Immigration Consultant.
5: 403-225-1111.
4: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
0: Ji, so ek wari phir to wapas aa gaye hain, kalle pandiyan ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ।
7: ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਬਹਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਦੋਸਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਊਂ, ਕਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਲੂੰ, लेकिन मुझे हमेशा दुत्कार ही मिली। अपने एक्स को बताने के बाद कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत बुरा लगा। ये बहुत बड़ा फैसला था। हम एक दूसरे को साढ़े तीन साल से जानते थे और लगभग हर दिन साथ बिताते थे।

0: कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, लेकिन अब ये मेरे लिए एक बहुत अहम समय है। कई सालों में पहली बार मैं फिर से आजाद हूँ। ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा कदम है।
1: हेलो, रुको।
2: हम सारी मेहनत कर रहे हैं। मैं सिर्फ नापने वाली एक छड़ी लाया था। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मैं अपनी क्लास में टॉपर था, इससे तो मुझे यहाँ टिकने में मदद मिलनी चाहिए ना। आकापुल्को, नाम भी नहीं सुना। ओके, शुक्रिया। चीयर्स।
0: चीयर्स।
2: हफ्ते, महीने या साल में आप कितनी बार किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि मैं तन्हा हूँ? ये बात सोचना कि पिछली बार मैंने कब किसी को ये कहते सुना या खुद कहा।
3: मैंने अपने जान पहचान वालों में देखा है, जो भी उम्र हो कोई इस बारे में बात नहीं करता। मेरी मॉम ने कभी नहीं कहा कि वो अकेली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अक्सर ऐसा महसूस करती हैं। मेरी बहन ने भी कभी नहीं कहा, तब भी नहीं जब वो एक नए शहर रहने गई थी।
4: इस वक्त खासकर मेरी फील्ड में, इसीलिए तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरे काम में इस तरह के रिश्तों की जगह नहीं है।
2: बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि मैं जो यहाँ महसूस कर रहा हूँ, खुलकर अपनी बात रख पा रहा हूँ, अपनी कमजोरियाँ दिखा पा रहा हूँ, इससे रिश्ते बनते हैं और यही तो अकेलेपन को कम करने का जरिया है।
0: तुम्हारी कहानी क्या है? मुझसे कभी किसी ने ये इस तरह नहीं पूछा है, शायद सालों बाद या शायद कभी नहीं। और सब कुछ एक ही बार में कह डालना,
2: एक तरफ तो इस बारे में बात करना सुकून देता है और सच में बहुत अच्छा लगता है इस बारे में बात करना, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि 24 घंटे बाद मैं फिर अकेला होऊंगा, शायद फिर अकेलापन महसूस करूंगा। बात करना मदद करता है, लेकिन सिर्फ बात करने से कुछ नहीं बदलता।

0: Und los geht's. Meine Frage.
1: ठीक है तो मेरा सवाल है तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आना चाहिए कि तुम्हें फिर अकेला महसूस ना हो
2: ऐसा गिटांक
3: सबसे पहले मेरे दिमाग में आया स्टुटगार्ट छोड़ना
2: ich glaub,
3: मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ कुछ बदलेगा और एक और चीज जो एक तरह से उससे जुड़ी हुई है खुद पर और दूसरों पर थोड़ा और भरोसा करना
2: und selbstvertrauen. Glaub so, ja.
4: Schön. मुझे लगता है कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से और निकलना चाहिए
1: तुम सबको अपने जवाब साफ साफ पता है ये बहुत बड़ी खूबी है मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना जवाब पता है इस वक्त मेरे पास ये जवाब नहीं है बिल्कुल भी नहीं
0: Gar nicht.
5: क्या तुम्हें अभी अकेलापन लग रहा है
1: नहीं अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है
5: लेकिन तुम्हारी असल जिंदगी में
1: हाँ बहुत ज्यादा
5: मुझे फिलहाल अकेलापन महसूस नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है चीजें जैसी हैं वैसी ठीक है
3: तुम्हारा मतलब अभी इस पल से है या जिंदगी में अपने हालात से
5: फ्राइबर्ग में अपनी जिंदगी में
3: अच्छा
5: अभी भी सब डावाडोल है लेकिन अगर सब ऐसे ही रहा और सब कुछ स्थिर हो गया तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा मैंने अपना सिर शेव कर लिया क्योंकि मैंने बस कर दिया वो होना ही था मैं अपने सिर पर वो बाल नहीं रख सकती थी मैं फ्राइबर्ग छोड़ने वाली हूँ क्योंकि अब मुझे अपनी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं ऊब चुकी हूँ अब मुझे शहर में बहुत अजीब महसूस होता है मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतना अकेला महसूस किया है या मैं कभी इतनी बुरी तरह टूटी हूँ जितना पिछले 3 महीनों में मैं अभी बाजल में हूँ पालेरमो जा रही हूँ मैं पेरिस में हूँ यहाँ पहुँचते ही

मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों में आंसू आ गए. क्या कमाल की जगह है. मैंने पेरिस में अकेले एक बहुत खूबसूरत दिन बताया.

0: मेरा बॉयफ्रेंड कमाल का इंसान है और मुझे लगता है कि ये पहली बार है कि मैं किसी रिलेशनशिप में अकेला महसूस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ है। मैं घूमने आई हूँ। मैं यहाँ पहली बार पिछले साल आई थी और तभी मेरी सबसे पहचान हुई। तब से मैं इस ग्रुप का हिस्सा बन गई हूँ।
1: तो तुम लोगों के नए घर में शिफ्ट होने की पार्टी कब है?
0: बस अपार्टमेंट जंग के मैदान जैसा दिखना बंद हो जाए तब करते हैं। मैं लोगों को बताने से बचती हूँ कि मैं अकेला महसूस करती हूँ या मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है। लोग कहते हैं कि तुम ना तो बहुत पतली हो और ना बहुत मोटी, तुम बिल्कुल नॉर्मल दिखती हो, तो तुम्हें अकेला क्यों लगता है? उन्हें मेरी बात शायद तब समझ आती है जब मैं बताती हूँ कि मैं बहुत समय तक अपनी जिंदगी से बिल्कुल कटी हुई थी और उसके बाद नए दोस्त बनाना, लोगों से जुड़ना बहुत मुश्किल था, अभी भी मुश्किल है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं कहीं फिट नहीं होती। मैंने सोच लिया है मैं इन गर्मियों में तैरने जाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने कई सालों से ऐसा नहीं किया है और बड़े होने के बाद तो एक बार भी नहीं। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं खुले में तैरने जाऊंगी तो मैं जैसे ही पानी में उतरूंगी मुझे अपना शरीर भद्दा लगने लगेगा और मुझे पानी से बाहर निकलने में डर लगेगा, क्योंकि लोग मुझे देखेंगे और सोचेंगे कि हे भगवान, ये कितनी मोटी है। मुझे हमेशा से और आज भी इस चीज से बहुत डर लगता है। इससे मेरे अकेलेपन का एहसास जरूर कम होगा, खासकर गर्मियों में, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिता पाऊंगी और हर समय वही पुरानी चीजें करने के बजाय कुछ नया अनुभव करूंगी। थोड़ा ठंडा है, मुझे ठंडा लग रहा है। तुम्हें भी पेट में कुछ लग रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती।

0: अगर मैं कोई टूटता तारा देखती तो यही दुआ मांगती कि काश बचपन में मुझे ऐसा कभी न लगा होता कि मुझ में कोई खराबी है, कि मैं जैसी थी ठीक नहीं थी और मुझे प्यार पाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत थी।
1: जब अकेलेपन या डिप्रेशन का दबाव या ये जो भी है बहुत ज्यादा हो जाता है तो मुझे इससे बाहर निकलने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। और अब मैं स्टैंड अप करके देखना चाहता हूँ कि ये कैसा लगता है। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, बहुत ज्यादा। ये मेरा पहला शो है। और तुम जूनियर चैंपियन हो, बधाई हो। तुम ये कब से कर रहे हो?
2: अगले साल मुझे 10 साल हो जाएंगे।
1: 10 साल? अभी तुम्हारी उम्र कितनी है?
2: मैं 19 साल का होने वाला हूँ।
1: तुमने 8 साल की उम्र में शुरुआत की? वाह, क्या बात है। तुम अभी स्कूल में हो, पढ़ते हो?
2: नहीं, मैं खुद का काम करता हूँ।
1: एक जादूगर के तौर पर?
2: सही मायनों में मैंने

0: ये मार्च से शुरू किया। बहुत बढ़िया, मैं अभी अपना काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं समझा नहीं, आप क्या कर रहे हैं? स्टैंड अप कॉमेडी डिप्रेशन के बारे में?
1: हाँ।
0: क्या आप उसका मजाक उड़ाते हैं?
1: यही आर्ट है, मजाक का सहारा लेकर लोगों को सोचने पर मजबूर करना।
0: क्या आपकी इंडस्ट्री में भी लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, जैसे इस पर बात नहीं करनी चाहिए? वो कहानियां भी सुनाएंगे और स्टैंड अप भी करेंगे। मुझे उन्हें यहाँ बुलाने में बहुत खुशी हो रही है, मिस्टर ओवरथिंकर।
2: हाय, dein Auftrag wird sein।
1: हेलो, जब आपको लगे कि मैंने कुछ बहुत कमाल का कहा है या कुछ बहुत ही बकवास कहा है, तो आपको इन्हें जलाना है, ओके? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बहुत बढ़िया। लोग अक्सर कहते हैं कि डिप्रेशन हमें बचाने का काम करता है। कमाल का जोश महसूस हो रहा है।
0: जब आप स्टेज से उतरते हैं तो रुकने का मन नहीं करता है।
1: जब मैं बाहर आया और खुद को शांत करने के लिए कुछ मिनट लिए, तो मुझे वो एहसास वापस आता महसूस हुआ। लेकिन उस रात कुछ ऐसे पल भी थे जब मुझे बिल्कुल अकेला महसूस नहीं हुआ, और इसलिए मैं ये दोबारा करना चाहता हूँ।
3: जी नवे नौजवान लोगों की या अजकल की जनरेशन की जड़ी एक वड्डा चैलेंज है जिहड़ा कल्लेपन वाला। पिछे जी वैसे आप भी देखते आए हैं भी डबल इनकम जिन्हों डिंक्स कहते हैं, डबल इनकम तो नो किड्स, जान डबल इनकम तो एक पैट जिन्हों कहते एक्स दे नाल ला के एस ला के उहदे नाल, तो यह प्रचलन जिहड़ा बड़ी तेजी दे नाल हुंदा जा रहा। अक्सर आप पिछले कुछ एक समय तो गल्लां करते आ रहे भी बच्चे ना पैदा करन दा ते व्याह ना करन दा जिहड़ा एक चलन बढ़ता जा रहा लोगों के विच, वो कई चीज़ां जिहड़ियां उहदे ते इंपैक्ट पाउंदियां ने, जिदा कल्लापन जिहड़ा वन ऑफ दैम है। एक टाइम निकल जाता, मैं देखा भी अक्सर बच्चे जिहड़े आ वह नौजवान बच्चे आ वक्खरे वक्खरी एज दे विच दूसरे अपने होम बच्चों के नाल जिहड़ा वह कोई रिलेशनशिप नहीं बनाते किसी भी तरह का, तो जदों तक वह नहीं उन्होंने नाल किसी चीज़ के विच जाते तो फिर वह अक्सर कला जड़ा है महसूस करना शुरू कर देंगे, जिदे करके उन्हें जिंदगी थोड़ी जी टफ भी होनी शुरू हो जाती है। तो बाद चो कम कर जड़े वो कम तो करी जाते हैं, कई बार वो कम कर लेंगे ने उन्ने क योगा कि जिन्ने के दिन उनका काम चली जाए जा वधिया भी करी जाते हैं अपने काम के, पर जो अपने काम तो बाहर आते हैं तो उन्होंने जी जिंदगी है वह बड़ी अजीबो गरीब हो जाती है। सो ये कुछ एक तरीके जड़े दो तीन चीज़ा जहाँ सुनिया लोगों ने की, अक्सर बच्चे जड़े ने अपने वाल कटाने की गल करते हैं, अपने आप को चेंज करने की गल करते हैं, या नवे रिलेशनशिप जाने की गल करते हैं, या नवा कोई हॉबी जी वो पैदा करने की गल करते हैं। सो इस तरह की जड़ी चीज़ा ने कोई भी जी अलग तरीके क्लिक जी कर सकती है, तो जी नौजवान पीढ़ी है, क्योंकि अक्सर आप देखिए भी जेडे पेरेंट्स जड़े ने जिदा हूँ साड़ी उम्र के या मेरे तो व्डे या थोड़े छोटे भी जड़े है कुछ ना कुछ उन्होंने सारिया बहारा देखिया जिंदगी दियाँ, पता भी अप्स एंड डाउन जड़े ने पार्ट ऑफ लाइफ हुंदा, ते बट बच्चे जड़े ने वह इतों के बड़े सॉफ्ट सेंसिटिव हुंदे ने, उन्होंने उन्नी चीज़ा नहीं देख पाते या उन्ना कुछ उन्होंने नहीं देखा, ज़्यादातर जो फोन के आले दुआले रहनगे या कंप्यूटर या अपने दोस्तों के नाल जी गलबात करके रखते हैं। सो ये जड़िया चीज़ा ने वह नुकसान जड़िया ने पहुँचा, तो सो आई होप भी तुसीं भी जे तुहाडे इर्द गिर्द कोई नौजवान बच्चे ने तो उन्हां दे नाल खुल के गलबात कर सकते हो, उन्हां दी हैल्प कर सकते हो। ये जिहड़ियां एग्जाम्पल्स आपां कर रहे सी बेसिकली ये हैगियां वैसटर्न वर्ल्ड दे लोकां दीआं, बट साडे भाईचारे दे विच ते आपां अक्सर मैनूं लगदा वी गलबात कर लैंदे आ बच्चिआं नाल। ते अज दा प्रोग्राम इत्थे समाप्त करन दी इजाजत करदे आं जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एंड शब्बा खैर टू ऑल जी।
4: द टाइम इज 8 PM। You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: आप तो आप न्यू फ्रिक्वेंसीज लेके आ रहे हैं और वी विश यू कि जल्दी से
1: इंशाल्लाह आप दुआ करें,
0: हमारी दुआएं आपके साथ हैं, पूरे कैलगरी वालों प्लीज दुआएं दो कि हमारा भाई अब अगली बार हमें डेफिनेटली शूट करे तो एक न्यू
1: न्यूज के साथ
0: एंड थैंक यू सो मच सलमा जी एंड जलाल जी फॉर हैविंग अस के लिए, बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे पास तीन और गेस्ट भी हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा।
3: हेलो, माय नेम इज रुपिका।
2: रुपिका,
3: मैं यहाँ पे आई हूँ बिकॉज ये जिस इवेंट के लिए यहाँ पे आए हैं सब, उसमें मैं यू नो पर्सनली बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ।
2: अच्छा,
3: मेरा उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग यू नो पर्सनल मोटिव है। वाई? बिकॉज मैं एक ऐसे घर में रहती हूँ जिसमें तीन जनरेशन हम इकट्ठे रहते हैं, सो फॉर दैट रीजन मेरे को ये यू नो पर्सनली ताकि मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने सीनियर्स को मोटिवेट कर सकूं और हमारी कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं उनको मोटिवेट कर सकूं, उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ।
2: बहुत अच्छी सोच और आपका बहुत अच्छा मोटिवेशन का वो है।
4: नमस्कार जी, मैं मेरा नाम सुनीता धोबर है और आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपको जब फोन करते हैं आप हमें टाइम दे देते हैं और आशा सर्कल की तरफ से हम सब आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं।
1: आमीन, आमीन,
4: और प्रोग्राम बना रहे हैं स्ट्रॉन्ग आफ्टर 40, 90 डेज का चैलेंज है और उसमें किसी को कुछ भी अपना एक वो नहीं है कि अलग से टाइम है या खर्चा करना है, बस अपलोड करना है और आप इसके साथ जो भी कर रहे हैं हमें बताएं और इसमें ज्वाइन करें। और जो इसको मेन बनाया वो है
2: हमारे सनी साहब,
1: डॉक्टर सनी। ओ माशा, ओ डॉक्टर साहब,
5: यस, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग सनी बोलते हैं बट मैं डॉक्टर सनी धुपर हूं।
1: आप जो क्लाउड में सनी है, yes. सनी हो तो और क्या चाहिए हमें। हाँ जी, हाँ जी,
2: सो टेल अस व्हाट्स हैपनिंग।
5: सो मैं हम आशा सरको के थ्रू जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर जो मोटिवेट करना चाहते हैं वो ये है कि हम अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखें और हम एक दूसरे का ध्यान रखें और सबसे ज्यादा है कि हमारा जो हेल्थ रिस्क हो रहे हैं उसके ऊपर हम बात करें, उसके ऊपर हम कुछ काम करें। हमारी कम्युनिटी के अंदर आप साउथ ईस्ट एशिया को देखो, राइट, साउथ ईस्ट एशियंस का जो पूरा डायफ्रामा है उसके अंदर हमारा रेट्स डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उन सब के अंदर सबसे ऊपर है
2: जी।
5: और कनाडा के अंदर अगर आप स्टैट्स देखो कि रिक्रिएशनल लाइक एक्टिविटी, जो बाहर जाके जिम जा रहे हैं या जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उसके अंदर साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी के नंबर सबसे कम है।
2: सबसे कम
5: मतलब हम सबसे कम हिल रहे हैं, सबसे कम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे जो डिजीजेस हैं सबसे ज्यादा है। और आजकल हमारे को दिख रहा है और सुन रहा है कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो 30s, 40s के अंदर चीजें नहीं होती थी वो ऑलरेडी हो रही है। जो बच्चे पहले डायबिटीज नहीं होते थे अब उनको भी हो रहा है। जो बुजुर्ग के टाइम पे हमारे को हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक्स को सुनने को आते थे अब वो यंगर एजेस में आ रहे हैं।
2: सही।
5: और ये सब हमारा जो कम्युनिटी की हेल्थ है उसके ऊपर हमको ध्यान देना है, हमको बात करनी है, हमको कुछ करना है। और हम बस ये बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस समर, इस नेक्स्ट 90 डेज हम बस वॉक करें, चलो हमारे साथ चलो, सबके साथ चलो, राइट, सो दैट्स इट। एंड लाइक उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करने आए।
2: ओह, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, यू पीपल हैव वेरी गुड इनिशिएटिव, या तो अब कौन बताएगा हमें कि किस तरह से आप ये लोग करेंगे?
0: बिल्कुल जी, शमा कपूर का बताना बनता है क्योंकि मैंने पास्ट अपने काफी गोल अचीव किए हैं, काफी वेट लूज किया, लेकिन सच तो ये है कि वेट लूज करना इज नॉट ओनली थिंग, मैंने अपने मसल्स भी काफी वीक कर लिए हैं। अब मुझे अपने मसल बिल्ड करने हैं, अपनी स्ट्रेंथ लेके आनी है, बिकॉज हमारा कोई वो नारा नहीं है कि वेट कम करो, ये दिखो वो दिखो, क्योंकि इनसाइड अब हमें अच्छा होना है। तो इनसाइड स्ट्रांग होंगे, कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, फैमिली स्ट्रांग होगी। और यही मैसेज सनी जी का, सुनीता जी का है कि आई एम ऑलवेज लाइक सनी प्लीज टेल मी हाउ टू लूज वेट, दीदी फर्स्ट बिल्ड योर मसल्स, सेम विद माय किड्स, दे आर जस्ट लाइक मम्मा डोंट लूज योर मसल्स। सो अनहेल्दी खाने में हम शेर हैं, पंजाबी हैं। अभी भी जैसे मैं बता रही थी आपको बिफोर दैट कि आज मेरा डेड एंड था, तो आज भी कई रेस्टोरेंट से खाना खुना खा के अपना सब बना के कल से हम होंगे कामयाब का नारा लगा के।
1: तो आपने अकेले खाया आज भी?
0: पति को ये सजा ہے ہی ڈزنٹ لائک ٹو ایٹ لائک انہیلدی
1: فوڈ ایک ہی پتی کے سامنے وہی کھاؤ گی تو کیا فائدہ نہیں پتی ایک ہی رہنا
0: چاہیے کھانا بدلنا چاہیے
1: آج کی بریکنگ نیوز شما جی

0: यानी पति एक ही होना चाहिए
1: पति ब्रेकिंग नहीं ये सही और सेक्सुअली है ब्रेकिंग न्यूज़ है व्हाई मतलब कि मैं थोड़ी सी आई एम अलाउड सो व्हेन आई डू एनीथिंग आई पोस्ट ऑन सोशल मीडिया में ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ रीजन है कि सर्कल बहुत ज्यादा है एक तो मोटिवेशन मिलती है एक दूसरे से दूसरा कि मैं चीट नहीं कर सकती आई हैव सो मेनी कैमराज अराउंड मी लोग देख रहे हैं कि शमा अच्छा गलत खाया तू तो कह रही थी तू डाइट पे है सो सेम थिंग आशा सर्कल का एक कॉन्सेप्ट हम जो लेके आ रहे हैं 90 डेज सो दैट हमारा ब्रेन एंड बॉडी 90 डेज में यूज टू हो जाएगी 90 डेज ये नहीं है कि 90 डेज में दुनिया बदल जाएगी या खत्म हो जाएगी लेकिन एक शुरुआत वी जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट इट सो एक बीच देना चाहते हैं ब्रेन को और वैसे तो आई डोंट थिंक सो इस कंट्री में हम आप लोग नहीं जानते वी आर अवेयर बट वी नीड सम कंपनी टू डू इट सो हमारा जो ऐप है फ्री है 100% इसमें कोई चार्जेस नहीं है कोई ऐसे ना तो हम कोई मेडिकल लाइन दे रहे हैं किसी को ना ही हम कह रहे हैं योगा करो ना ही कह रहे हैं ये करो वो सिर्फ वॉक चलना कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा हंसते जा मुस्कुराए जा
2: सो हाउ डू पीपल गेट इन टू दिस ऐप
1: उसका अभी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम लिंक सब जगह शेयर कर रहे हैं और इसके अलावा जब वो ऐप में आप एंटर हो जाते हो तो डेली वो ऐप आपके फोन के साथ आपके स्टेप और आपकी एक्टिविटीज को कैच करता है वो डेली उसमें आएगा कि आपको खुद पता चलेगा भी आज मैं इस नंबर पे हूँ तो भाई शर्म आनी चाहिए मुझे कल और बढ़ना है या दूसरा ज्यादा कर रहा है मैं कॉम्पिटिशन ही सही लेकिन इट इज गुड फॉर योर हेल्थ राइट सम नॉक्स देयर सो उसको डाउनलोड कर लेंगे प्लस उसके अलावा हमने कुछ पॉइंट सिस्टम रखा है इसमें कि हम एक्स्ट्रा अपनी फ्रेंड्स के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं योगा कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं हम अपनी पिक्चर्स भी अपलोड करते रहेंगे लुक भी करते रहेंगे वीडियोस डालेंगे टू इंस्पायर ईच अदर उसके भी पॉइंट्स हैं और नो डिस्क्लोजिंग एनीथिंग लेकिन यस ऑफकोर्स 90 डेज कम्प्लीट होंगे तो वी हैव अ प्लान कि हम एक अच्छा सा सब मिलके फिर उसको सेलिब्रेट करेंगे और देखेंगे किसने क्या किया
2: आउटडोर करिए
1: और उस दिन हम मिलके खाएंगे
0: तो यू नो व्हाट जो है वारन वी डू दिस कि 3 महीने बाद जो आपके विनर्स होंगे तो आप फिर ब्रिंग देम टू द रेडियो शो देम टू द वर्ल्ड
1: बिल्कुल हम आप लोगों को बुलाएंगे वो देखिए अब आप देखिए आज मैंने ये सारे ब्लड टेस्ट करवाए और ऑनेस्टली विद द डेट रिपोर्ट मेरी होगी और 3 मंथ्स की रिपोर्ट भी फिर मैं शो करूंगी कि ऑनेस्ट नथिंग वी गोना हाइड की ये गलत हुआ सही हुआ तो बिल्कुल सही चलेगा
0: जो है छुपाने की उम्र तो चलेगी अभी
1: नहीं नहीं अभी तो है और जितना छुपा रहे ये वही निकल रहा है बाहर टाइम पे ना छुपाया होता तो ये पंगा ना पड़ता
0: अच्छा यू नो बिफोर वी गो ऑन ये जो आशा सर्कल व्हाट इज दैट और ये कब लाइक हु स्टार्टेड और ये कब से स्टार्ट हुआ
2: क्या बताएं आशा सर्कल तो हमारा एक्चुअल में लास्ट ईयर से शुरू हो गया
0: अच्छा
2: और उससे पहले हम सफर के नाम से एक मेरी एसोसिएशन
0: सफर ओह नाइस
2: वो करते थे फिर कोविड आया सब कुछ बंद हो गया फिर जो बेटियां मेरे साथ थी वो भी हेल्प करती थी फिर उसकी भी शादी हो गई वो भी चली गई फिर बेटा मूव हुआ हमारे पास में फिर इसने मुझे बोला कि मम्मी आप वो जो करते थे या लोगों की मदद करते थे या कुछ करते थे वापस क्यों नहीं करते मैंने कहा एक तो हमारी उम्र हो गई है एक अब उसको वापस से नया रजिस्टर करेंगे तो फिर इसने मुझे नाम दिया कि मम्मी आप सबको होप देते हो आशा दिलाते हो कि तो हो जाएगा चिंता मत करो तो आशा सर्कल नाम डॉक्टर उसके बाद से हम इस पे चल रहे हैं और लास्ट ईयर इसने मेरे को मेरा एक ड्रीम था मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि मुझे माउंट कैलाश जाना है और ये देखता था कि मम्मी सीढ़ियां चढ़ती है तो सांस खुल जाती है पोते को गोदी लेती है तो हाथ दुखने लग जाते हैं इसने जो मुझे ट्रेनिंग दी ना 3-4 महीने की मेरे साथ ये भी गया सुबह 6 बजे उठा के मुझे ले जाता था सल्फर माउंट चलाना मास्क मंगा के दिया
1: अच्छा
2: तो इसने मेरा वो ड्रीम पूरा कराया लेकिन उसके साथ मेरी हेल्थ काफी इम्प्रूव हुई
1: वो तो होती
2: बहुत इम्प्रूव हुआ जैसे मुझे एक नशा सा चढ़ गया कि नहीं वॉक तो करनी
1: है
2: तो आज भी मैं चलती हूँ कभी कभी कुछ हो जाता है तो ठीक है आप सब जानते हैं एज के हिसाब से हम सबको होता है तो आशा सर्कल ने उस नाम से आगे बढ़ा और इसने बोला नहीं मम्मी अगर आपको इतना अच्छा लगता है तो व्हाई नॉट आप ये हेल्थ से रिलेटेड कुछ करो क्योंकि देखो बाकी फंक्शंस तो होते हैं हमारा गाना बजाना कल्चर शोज बहुत हो रहा है सब कुछ होता है हेल्थ को लेके एक दिन चलो टूर्नामेंट हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में अभी बहुत रिसेंटली लोगों की 38-40 भी नहीं है बच्चों की यंग डेथ्स देखी है और बड़ा दुख होता है उसके लिए हमने ये कदम उठाया और जैसे कहा गया कि मिलके चलो इसमें कुछ नहीं आप कुछ भी कर रहे हो अगर मुझे पता लगा कि शमा वहां जा रही है या रूपी का कहीं है

0: बड़ी थी और आशा सर्कल को थैंक यू कहते हुए यू नो आई ज्वाइन द ऐप एज वेल एंड माय हस्बैंड एंड आई यू नो वी मेक इट अ पॉइंट के रोज कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी या वॉक पे जाएं या 10 बार स्टेयर्स ऊपर नीचे करें
1: कुछ भी कर सकते हैं
0: जैसे जिन दिनों मैं ऑफिस जाती हूँ मेरा ऑफिस 5th फ्लोर पे है सो मैं कोशिश करती हूँ मैं स्टेयर्स लेके जाऊँ या फिर अगर सुबह टाइम नहीं है भाग रही हूँ तो लंच ब्रेक में आधा घंटा है मेरे पास क्या लगता है 10 मिनट लगते हैं 5 सेट ऑफ स्टेयर्स चढ़ने में And you know these little things add up. तो हो क्या रहा है घर के अंदर अभी you know मेरे घर में सब देखते हैं जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऑलरेडी वॉक पे जाने लग गए हैं एंड देन माय पेरेंट्स दे आर लाइक ओ अच्छा ये कर रही है हम भी करेंगे वो सुबह में तो ऑफिस कर रही होती हूँ एंड वो शुरू हो जाते हैं यू नो मम्मा जैसे फर्स्ट स्टेप है जो स्टेयर्स का अप डाउन
1: मतलब
0: एवरी मूवमेंट मेक्स अ डिफरेंस एंड इधर दर्द हो रही है उधर दर्द हो रही है वो वाली सब जो कंप्लेंट्स आती थी उनकी वो धीरे धीरे थोड़ी एलिमिनेट हो रही है
1: वो
0: 2 हफ्ते जैसे हुए हैं इसको शुरू करे हुए वो ऑलरेडी वो थोड़ा थोड़ा उन चीजों में फर्क पड़ने लग गया है सो दैट्स काइंड ऑफ द इफेक्ट दैट दिस इज हैविंग सो वो जैसे सोशल मीडिया में अगर डालने की बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को देख देख के और लोग ज्वाइन करेंगे जितने लोग ज्वाइन करेंगे वो कम्युनिटी के स्टैट्स उतने बेटर होंगे
2: जैसे जो अपना सोशल मीडिया पे नहीं हो जैसे मैं और शमा तो है नहीं सोशल मीडिया में तो हमें किस तरह पता चलेगा हम कहां से पॉइंट हाँ अच्छा यू नो
3: सो एक चीज ये है कि सब लोग के पास व्हाट्सएप है शर्मदी ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया नैनी टेस्ट चैलेंज का आप उसके ऊपर ज्वाइन भी कर सकते हो आप हमारे पोस्ट देख सकते हो आप उसके अंदर टेक पार्ट कर सकते हो कि क्या हो रहा है सो देयर इज लॉट्स ऑफ वेज टू बी इन्वॉल्व हमने जितना ज्यादा ओपन रख सका है हमने रखा है अगर कुछ और कर सकते हैं तो आप हमारे पास लेके आइए हम हमेशा
2: यू नो जस्ट द थॉट यू नो इफ यू रेफर समवन जस्ट इफ आई ज्वाइन जस्ट ओके यार लाइक इफ समवन रेफर्ड यू Oh yeah, Shama. Then Shama gets a point.
3: That's a great idea.
2: That will help.
1: Yeah,
2: you get extra point, idea. Extra bonus, whatever, right?
1: Yeah, that's a great idea. Actually.
3: That's a definite feature that we'll have to look at how to add, but we will.
2: it will help.
1: And also for the you know like a certain age pe aakar you know like you know yes, it better yes, also that we all kind of. Make excuses
3: yeah.
1: yes. के, मुझे ये करना है एंड आई एम बिजी विद दैट पर अपनी अपने आप की जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वी डोंट डू दैट सो इवन यू नो यू स्टार्ट लाइक व्हेन आई हैड माय नी सर्जरी सो आई सेड नो आई हैव टू बिकम स्ट्रांग सो यू नो आई स्टार्टेड डूइंग सिटिंग एक्सरसाइजेस एंड स्टेशनरी बाइक इज अ मस्ट फॉर द नी रिप्लेसमेंट बिकॉज दैट इज अ मस्ट थिंग सो इवन इफ एट होम यू नो यू people are those who are not very active they're sitting down they can follow on youtube there's tons and tons of beautiful exercises they can just start 5 or 10 minutes of it yes. and even the little movement then you know you start feeling better and then you'll say okay main chalo thoda 5 minute aur badha ke dekhti hu aur dekhta hu ke how do I feel about it and these are the things that okay if a 60 or year old joins maybe that person may get double points for that with the age 10 years of age and then you add double points or triple points to that person so that will motivate them ke oh okay with my age I'll get triple points and I must start doing something so these are little things which can motivate them you
4: know jaise aapne kaha na youtube pe available hai to duniya mein gyan bhara pada hai sab kuch hai par motivation kahan se aayegi aapki mummy se aapke daantne wale husband se aapke bachchon se ek friend se yes of course he is like behind me so
2: देख रहे सब
4: हाँ जी आजकल हमारा ये चलेगा कि तुमने कम किया मैंने ज्यादा किया तो कोई क्लोज वॉच करने वाला
1: हो
4: हम वो कहते हैं ना कि वी आर नॉट लोनली पीपल कि हमें जंगल में छोड़ दो हम बढ़ जाएं वी आर कम्युनिटी पीपल और जहाँ पे अगर 4 बंदे देख रहे हैं हम ड्रेसअप भी होके निकलते हैं हम अच्छा दिखना क्यों चाहते हैं हम आपने देखा है कि कितने लोग सनी भी जानते हैं इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं बच्चे भी सारे और मैं पर्सनली बिकॉज आई एम इन अ ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री एज वेल तो मेरे पास इस टाइम हम ग्लोबल टीच करते हैं मेरे ख्याल से 8-9 हजार बच्चों को मैं रोज पढ़ाती हूँ और जब मैं उनके पर्सनल चीजों से बात करती हूँ तो दे आर शाय बिकॉज दे डोंट फील लाइक कि वो प्रेजेंटेबल है
1: हाँ.
4: वो अच्छे नहीं दिख रहे तो वो शाय होते जा रहे हैं शाय हो रहे हैं खाते जा रहे हैं मोर इंटू सोशल मीडिया मोर इंटू डिप्रेशन एंटी सोशल तो जब वो निकलोगे करोगे अपने आप ही आपके अंदर आएगा यार नहीं आई एम बेटर देन एंड सीरियस नोट्स जब सनी और सुनीता दीदी हम सब ने जैसे इन्होंने बताया वी

0: already started.
1: Yeah.
0: हमारे पास ऑलरेडी मेरे कम से कम भी 70 मेरी फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी हमने प्री स्टार्ट कर दिया हुआ है और हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि अब जंग के लिए सिपाही रेडी हैं ऑल सोल्जर्स सो जंग तो कोई नहीं है जीतना किसको है अपनी बैड हेल्थ को और बनाना अपनी गुड हेल्थ है दैट्स इट तो इसमें किसका क्या जा रहा है ना तो जिम के पैसे ले रहे हैं ना वॉक की मनी ले रहे हैं ना ऐप के लिए ले रहे हैं हम अपनी पॉकेट से खर्च रहे हैं
1: इट्स अ
0: सोशल और गिफ्ट मिले हम अभी बता नहीं रहे वो सरप्राइज है
2: लेकिन जैसे अभी आपने रूपी का जो बात सुनी जब हम आपस में बैठ के बातें कर रहे थे जब ये चीज हम एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर रहे थे तो हमें इन्होंने बल्कि बूस्ट दिया ये नहीं कहा ये क्या करने जा रहा उसको कौन करेगा सब करता है और जब मेरी एज की इनकी भी मम्मी है मदर इन लॉ है सब साथ रहते हैं जैसे तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी
0: इवन हाँ जी जैसे हम बात कर रहे थे जब किसी को हमने काफी लोग अभी कह रहे हैं वॉक तो हम रोज ही करते हैं इसमें आप क्या नया कर रहे हो तो मैंने दो तीन जनों को नॉक किया कितनी वॉक कर रहे हो कभी जाते हैं कभी यही तो हम कह रहे हैं वॉक तो हम सब करते हैं पर मिलके कर लो ना भाई अच्छा कर लोगे बेटर कर लोगे कंपटीशन में कर लोगे
3: जी आज का शो इसको स्पॉन्सर किया है कंटिल स्टोयर इनका फोन नंबर 4032901111 cstoyota.com और थिंक टोयोटा थिंक द जायंट कंटिल स्टोयर मोबाइल मॉर्गेज स्पेशली रूबीना कस्टमर इफ यू लुकिंग फॉर एनी इंश्योर फॉर योर मॉर्गेज यू कैन कॉल हर शी वर्क्स फॉर टीडी बैंक 4038707069 हमजा बट फ्रॉम द बट क्राय बैंक बैंकट हॉल फॉर एनी एनिवर्सरी एनी बर्थडे पार्टी और एनी इवेंट जैसे हमारे इवेंट होने जा रहे हैं सुनीता जी भी आ रही है हम शो शर्मा जी भी आ रही है अगस्त 7 को शो होने जा रहे हैं फिर रफी वहीं हो रहा है बटकड़ाही में हो रहा है तो अपना जो 50% टिकट्स आर सोल्ड आउट ऑलरेडी तो अगर आपने टिकट लेनी है यू कैन कॉल मी 5878 मेरा फोन नंबर क्या 5878994786 और फिर नहीं नो मेंटली आई नीड नसीब ज्वेलर्स कैलगरी इनका फोन नंबर 8259875000 अगर आपको पाकिस्तान गोल्ड डिजाइन चाहिए इन कैलगरी दिस इज ओनली प्लेस इनकी लास्ट दो दिन तीन दिन की सुपर डुपर सेल थी दे वर बिजी लाइक क्रेजी इट्स लाइक देयर वाज नो चार्ज फॉर एनी मजदूरी और एनी जो लेबर या देवर बिजी लाइक एनी थिंग एंड ऑफकोर्स इफ यू नीड एनी कॉन्टेक्ट लेंस सन ग्लासेज और एनी ग्लासेज यू कैन कॉल बशीर सोमानी 4037203937 आइज बाय बशीर डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि हम बहुत खाते हैं अच्छा खाते हैं तो ये हमारा खाना जो माशाल्लाह यू नो बड़ा हेल्दी होता है स्पाइसिस के साथ होता है ना अगर हम टीका नहीं खाए तो हमें खाने में जो है मजा नहीं आता है अगर वाइफ हस्बैंड झगड़ा नहीं करे तो वो भी हमें मजा नहीं आता है you know, it's an, ऐसा नहीं कि हमें नफरत है ये हमारा प्यार है कभी थोड़ी थोड़ा तो जो है हमारा स्पाइसी प्यार भी हो जाता है थोड़ा तीखा प्यार भी हो जाता है तो हम खाने का हम किस तरह उसको ठीक करें हम जो जो हमारे जो कैनेडियन भाई बहन खाते हैं बड़ा
0: उसमें जो तल के फ्राई करके ऑयल डाल के खाया जाता है उसका प्रोसेस किया जाता है
3: रोके
4: एक चीज यहाँ पे है कि बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे बहुत बुजुर्ग लोग जो लाइक इसके खिलाफ कई बार बोलते हैं कि नहीं नहीं ये जो तुम बोल रहे हो ये ठीक नहीं है हमारे बुजुर्ग तो ऐसे बहुत खाते थे आई विल जस्ट से कि अगर आप जो अभी कर रहे हो हमारे जो स्टैट्स हैं वो उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है कि अगर हम सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स ले रहे हैं सबसे ज्यादा डायबिटिक बन रहे हैं सबसे ज्यादा ओबीस बन रहे हैं तो ये हमारे खाने का नतीजा है तो अगर आप बोल रहे हो कि ये हमारा बुजुर्ग करते थे बहुत हेल्थी थे हम नहीं है और हम नहीं है क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग ऐसे खाते थे वो इतना तला हुआ नहीं खाते थे वो इतनी वेजिटेबल्स नहीं खाते थे वो घी खाते थे और वो फार्मर्स थे ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट करते थे और वो चलते रहते थे और उसकी वजह से लाइक हम ज्यादा से ज्यादा बैठते हैं स्मोकिंग इज बेसिकली सिटिंग नाउ राइट लाइक वो सेम चीज बोलते हैं जितनी मसल उनके पास थी हमारे पास आज भी उतनी होती नहीं एंड जो लोग ये नहीं समझते हैं कि मसल क्यों इम्पोर्टेंट है लाइक हमारे पास इतना स्टेटिस्टिक्स है कि अगर कोई बंदा जिसके पास मसल्स है जो स्ट्रांग है वो हॉस्पिटलाइज हो गया उसका बाहर निकलना ज्यादा चांसेस है अगर किसी के पास मसल नहीं है बिकॉज जब आपकी बॉडी को नुकसान होता है उसको बीमारी होती है और आपको रिकवरी करनी पड़ती है सबसे पहले आपकी बॉडी शुगर लेती है

0: हम शुगर अपनी मसल में स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के जैसे जब हमारे को एक्सरसाइज करनी है जब हमारे को भागना है जब हमारे को इमरजेंसी से निकलना है वो मसल से शुगर सीधा यूज होता है
1: जी जी
0: और जब हम बीमार होते हैं वो मसल से सीधा निकाल के वो यूज करते हैं और उसके बाद में आपकी बॉडी मसल को ब्रेक डाउन करके उसको यूज करती है हम फैट को ज्यादा प्रोसेस नहीं करते हैं वो बहुत एंड में होता है तो लोग को लगता है कि ओ ये स्टोर्ड है तो ये तो ठीक रहेगा लेकिन वो नहीं सच है एंड सो लाइक जो हमारा खाना है हमारे को देखना है अगर हम प्रोटीन ठीक से नहीं खा रहे हैं और वेजिटेरियन डाइट के अंदर कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम प्रोटीन ठीक से खाएं हम दाल जितनी खानी चाहिए उतनी नहीं खाते हैं हम ज्यादा रोटी खाते हैं कम दाल खाते हैं हम पनीर या सोया उतना नहीं खाते हैं बिकॉज हमको लगता है कि उससे नुकसान होगा लेकिन हमारी प्रोटीन कम हो रही है और हम मसल भी कम कर रहे हैं आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज आपकी मसल नीचे को ऑलरेडी सार्कोपेनिया हम सबको पता है ये जेनेटिकली है तो अब अगर हम अपनी प्रोटीन के ऊपर ध्यान नहीं दें स्पेशली जब हम लाइक ओल्डर बन रहे हैं अगर हम मसल्स को यूज नहीं कर रहे हैं जैसे वो मेंटेन रहे हम तो बस और भी और लूज करते रहेंगे और जब हम एज के साथ बीमार भी होंगे तो हमारी बीमारी हमारी रिकवरी सपोर्ट भी नहीं करेगी तो हमारे को कम यूज करना है ऑयल हमारे को अपनी प्रोटीन ज्यादा करना है आपको तब भी शुगर खानी है आपका ब्रेन शुगर यूज करता है आपके मसल्स यूज करते हैं हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कार्ब्स मत खाओ पर हम बोल रहे हैं कि आपका जितना प्रोटीन होना चाहिए वो होना चाहिए और जितना कम तलावा खाना चाहिए उतना कम तलावा खाना चाहिए
1: तो ये अपना ग्रिल करके ज्यादा खाना चाहिए इज दैट लाइक इज दैट बेटर
0: प्रोबेबली बेटर अ लिटिल बिट
1: या बारबेक्यू स्टफ यूज अ ग्रिल एज़ मच
2: चिकन बॉइल्ड स्टीम्ड
1: हां जी जी ये बिल्कुल बिल्कुल या
3: और बुजुर्ग चलते बहुत
1: यस
0: बट एवरीथिंग इज विथ लाइक अगर आप बस लाइक वो करने लग जाओ तो जो स्मोक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं फिर आपके यू नो स्टमक कैंसर बढ़ जाता है अगर आप ज्यादा रेड मीट खा रहे हो तो आपका कोलन कैंसर बढ़ जाता है अगर आपका वो सो लाइक सब चीज के अंदर अच्छा बुरा है
2: जलाल जी ने अब कहा ना कि आपने ग्रिल खाना चाहिए तो वो जो मैरिनेटेड सब लोग पूरा फैट वाला उठा के ग्रिल करके वो तो उन्होंने कहा था उनके शो में सो थिंक अबाउट जो आपकी प्लेट में है उसकी हिस्ट्री क्या है उसका प्रेजेंट क्या है और उसका फ्यूचर क्या होएगा खाने के बाद फिर ब्रेन सेट होता है अदरवाइज मुश्किल है
4: ये जो ऐप है इनकी और जो प्रोग्राम हो रहा है 90 डेज का है ऐसा नहीं है कि मैं कल सो के उठूं मैं बोलूं मैं कल से बिल्कुल बॉइल्ड खाना खाना शुरू कर दूं ऐसा तो नहीं होगा राइट या और मतलब मेरे जैसे बुजुर्ग हैं घर में वो एसिडिटी की गोली खाते हैं तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप लिखो कि आपने किस दिन क्या खाया जब आपको एसिडिटी की गोली खानी पड़ी तो वो जब हम खाना अपना यू नो व्हेन वी वॉच व्हाट वी आर ईटिंग ऐसा नहीं है कि कोई यू नो ये फूड पे लेबल है कि ये बुरा है ये फूड पे लेबल है कि ये अच्छा है खाओ पूड़ी खानी खाओ आधी खाओ एक खाओ पांच पूड़ियां नहीं खाओ ना एक ही टाइम पे
2: मॉडरेशन
4: में सब कुछ खाओ अपनी अपनी ख्वाहिशों को अगर जिंदगी के 75 साल आपने एक चीज खाई है एवरी संडे अगर परौठे खाए हैं या हर तीसरे दिन परौठे खाए हैं हम आपको ये नहीं बोल रहे एकदम से आप उठ के परौठे छोड़ दो एंड ये मेरी लाइक लिटरली मेरे डैड के साथ ये स्ट्रगल रहती है ही लव्स परौठे फॉर ब्रेकफास्ट मैं उनको बोलती हूँ ठीक है खाओ हर तीसरे दिन खाओ किसी दिन बाजरे के आटे के खा लो ठीक है थोड़ा सा किसी दिन कोई घी लगा लो किसी दिन दूसरा घी लगा लो किसी दिन बिना घी के बना के ऊपर देसी घी लगा लो साथ में ग्रीक योगर्ट खा लो तुम्हारा प्रोटीन भी पूरा हो गया तो मतलब अलग अलग वेरिएशन ट्राई करते रहो Which is why ये जो 90 डे टाइम फ्रेम इन्होंने बनाया ना ऐप के ऊपर इट इज समथिंग दैट विल हेल्प ऑल ऑफ अस मैं ये नहीं कह रही कि मैं परफेक्ट खाती हूँ ऑब्वियसली मेरे लिए भी हमेशा स्ट्रगल रही है जिंदगी के 25 साल यू नो वो ही सब किसी ने कभी रियलाइज नहीं किया कि ये अच्छा है वो बुरा है मैगी भी रोज शाम को खाते थे सब कुछ खाते थे तो वो धीरे धीरे बर्ताव आने में टाइम लगता है 90 डेज और परफेक्ट वेदर भी है हमारे पास इट इज ऑफ यू नो ऑसम अपॉर्चुनिटी जो है हमारे सबके हाथ में एंड 40 के बाद हम एज इट इज अपने आप को इग्नोर करते हैं मेरे जैसी जितनी भी यू नो मेरी आसपास की एज ग्रुप की लड़कियां हैं हाँ चलो बच्चों के साथ भागना है बच्चों को यहाँ लेके जाना है वहां लेके जाना है मम्मी की अपॉइंटमेंट है ओहो डॉक्टर को फोन करना है फोन पे अपॉइंटमेंट करनी है लेके जाना है ये करना है वो करना है कम्युनिकेशन बैरियर है नहीं मुझे तो 2 घंटे वहीं साथ बैठना है लाइक सारी चीजें जिंदगी की प्रायोरिटी ले जाती है बट अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं हम तो वो जो थोड़ा सा एक चेंज लाना ना हाँ ठीक है लेके जाओ मम्मी को अपॉइंटमेंट पे ठीक है डॉक्टर का 3rd फ्लोर पे क्लिनिक है ठीक है मम्मी को बोलो तुम एलिवेटर ले लो मैं स्टेयर्स लेके आऊंगी कोशिश करो 3 फ्लोर्स ही हैं मम्मी को भी बोलो साथ में तुम्हारे से 15 मिनट पहले चले जाओ छोटी छोटी चीजें थोड़ा थॉटफुलनेस अगर हम डालते रहेंगे हियर एंड देयर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एन अमेजिंग आइडिया

0: whenever we see our learning, put the phone down.
1: Yeah. मेरा बेटा या सेम थिंग मेरा बेटा जब छोटा था छोटे वाला तो मैं हमेशा वो जी बोल के बात करते रिस्पेक्ट से जी तो मम्मा आप तो सोहम बोलते हो मेरा नाम लेते हो तो आई स्टार्टेड सेइंग सोहम जी आप खाओगे आई मैं अपने दोनों बच्चों को जी लगा के बोलती हूं इफ वी नीड रिस्पेक्ट हमें देने की पड़ेगी इट्स नॉट कि हम बड़े हो गए हैं तो उम्र के साथ क्या कमा लिया हमने उम्र के साथ अक्ल कमानी चाहिए मेरे हिसाब से और वो हैबिट से आती है आशा सर्कल इज ट्राइंग फॉर 90 डेज चलिए हैबिट कमा लीजिए
2: हैबिट कमा
1: कुछ बन जाइए और बना दीजिए
3: कम्युनिटी जुड़े मैं तो ये कहूंगी हर तरीके की कम्युनिटी
1: नहीं दिस इज वेरी ट्रू कि रिलीजियसली बहुत जल्दी अभी देखिए हम जागरण करवा के हटे हैं 22,000 पीपल दे आर कमिंग देयर
4: यस ऑफ कोर्स
1: और दूसरी इवेंट हमने हनुमान जयंती करवाई एक आवाज देते हैं तो लोग आ जाते हैं चाहे वो अब इस्माइली जो हमारे कर रहे हैं सारा तो अब देखिए कि कम्युनिटी बहुत जल्दी आती है कि वहां पे रिलीजियस थिंग है लेकिन द ट्रू रिलीजियस इज लाइक इनसाइड हम जानते हैं और वो क्या है हमारी बॉडी और अगर बॉडी सेटल नहीं है तो इन सब चीजों का नहीं तो जिस तरह से लोग रिलीजियसली बिलीव करते हैं जैसे डाइट है अगर हम हिंदुइज्म से बिलोंग करती हूँ तो हमारे यहाँ फास्टिंग कह देना कि आज मेरी मंडे की फास्टिंग है ट्यूजडे की है तो हम कहेंगे नो नो नो नो नो मेरा फास्ट है मैं ये नहीं खा सकती सॉरी सॉरी सॉरी चाहे डेली खाते हो तो ऐसा डेली हेल्थ के लिए क्यों नहीं नो नो नो नो मैंने आज ये नहीं खाना आई एम ऑन डाइट नो नो नो नो आई एम ऑन दैट So this is religiously, do it religiously, rapidly. So this is our thing we want to develop.
5: Talking about religiously, कभी कभी कभी हस्बैंड से बात करती हूँ कि इंडिया
4: हस्बैंड का नाम क्या
5: है गौरव
4: गौरव okay.
5: yeah, yeah.
4: I'm sure he's gonna watch or listen.
5: I hope so. Hi Gaurav. इतनी बार याद कर लिया you better watch it.
4: Hi Gaurav, कितने पकौड़े खाए मेरे पीछे
5: नहीं ही इज वेरी कॉन्शियस अबाउट क्या पकौड़े वगैरह नहीं खाता बट एनी हाउ हम कई बार बात करते हैं कि इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन्स के पहाड़ों के ऊपर कभी किसी पहाड़ के ऊपर भगवान का मंदिर है कभी किसी पहाड़ के ऊपर है वहां पे चाहे 70 साल का कोई हो चाहे 30 साल का हो चाहे 10 साल का हो सब चढ़ते हैं श्रद्धा से चढ़ते हैं आसपास इतने सारे लोग हैं सबको देख के चढ़ते हैं तो वही सेम श्रद्धा अगर हम अपनी हेल्थ को अगर भगवान माने अपने आप को हमारे सबके अंदर भगवान है बोलते हैं राइट अगर हम अपने आप को भगवान माने अपने आप को इस तरह से वॉच करके कि हाँ हमने अपने हेल्थ के बारे में सोचना है मेरे को इसलिए मेरा पर्सनल मोटिव ये है कि अगर मैं ठीक रहूंगी तभी मैं इन सबकी सेवा कर सकूंगी ना अभी सबको मोटिवेशन दे सकूंगी एंड आई एम श्योर सबका ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक कोई ना कोई मोटिव है हम चलो चार लोग यहाँ बैठे हैं जितने लोग भी सुन रहे हैं देख रहे हैं सबका इस तरह से कुछ ना कुछ दूसरे के लिए जीने क्योंकि हमारी कम्युनिटी दूसरे के लिए जीती है तो दूसरे के लिए जीने का जो भी मोटिव है किसी का उनको सबको आगे आके खुद ज्वाइन करो मोटिवेट करो अपने उस किसी को जिसके लिए तुम सब कुछ करते हो अपनी लाइफ का उनको भी ज्वाइन करवाओ तो मतलब बेसिकली दी आइडिया इज के अपने आप को अपने शरीर के मंदिर को हेल्दी बनाओ
1: सो ट्रू
4: सो यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग जो है सलाम नमस्ते क्या लगी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 एफएम अब शमा कपूर है रूपिका आपका कोई रिलेशन है दीपिका से सुनीता जी और उनके बेटे डॉक्टर सनी अब मौजूद है सो विल टेक ए स्मॉल ब्रेक के बाद जो है जो है अपना विल ज्वाइन बैक और फिर आपको फिर से एक जो फिर से डिटेल देंगे कि ये प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है एक्चुअली ये कल से शुरू हो रहा है विल गिव यू अगेन एक बार फिर से जो है रिपीटेशन आपको करेंगे कि आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं ये सुपर डुपर ग्रुप तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक
6: अपनी पाशा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सीधे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4096 ओइसे स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 587-617-4696
7: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेड

0: कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, बोरी करेगा कब, तो फिर बाद में कब करोगे भाई, कर लो आ जाओ, आपको बुला बुला के क्या कह रहे हैं, जी लो, हंस लो, मुस्कुरा लो, किट्टी पार्टीज में अच्छे दिखेंगे, स्किन अच्छी हो जाएगी, हेयर गारंटी देती हूँ तुम्हारे बाल स्किन सब कुछ अच्छी होगी चलने से, पानी पीने से, फूड अच्छा रखने से, सो कम एंड ज्वाइन अस, जस्ट 90 डेज
1: चैलेंज.
2: What do you like to say? Last message about this.
3: Well, अगर मैं टाइम निकाल के आ सकती हूँ जबकि मेरे घर में 7 लोग रहते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, मुझे ये बताओ, बस मेरा सबसे यही सवाल है, जो जो सुन रहा है, जो देख रहा है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर यू नो फुल टाइम नौकरी के साथ, इतने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ, मैं अभी भी यहाँ आई हूँ और दाल चावल बना के आई हूँ, इसीलिए आई हूँ ताकि मैं अपने आप को भी मोटिवेट कर सकूँ और जितने लोग भी सुन रहे हैं या आगे भी वो जिसको बता सकते हैं वो सब एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं.
1: आप कंप्लेंट करें कि कॉम्प्लीमेंट करें?
3: मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और एम्फेसिस करके यू नो कमांड भी कर रही
1: हूँ,
3: सुना भी रही हूँ, सब कुछ बीच में डाल रही हूँ. नहीं, गौरव तो सुनता है, मैं अपनी सब सहेलियों को सुना रही
1: हूँ. जी सुनीता जी,
4: बस जी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब आइए, साथ मिलके चलिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए हमारे 90 डेज स्ट्रांग के साथ में, और विनर बहुत सरप्राइज होंगे अगर आप जीतोगे तो, यही सोच लो हमें क्या मिलने वाला है. और उसके लिए बस मोटिवेशन है, और हेल्दी रहोगे तो देखो घर भी रहेगा, परिवार, कम्युनिटी और सब रहेगा. और कनाडा डे है 1 जुलाई, और उसी दिन हमने इसको चूज किया है, तो आप सबको हैप्पी कनाडा डे टू, और हमारे साथ आइए, जुड़िए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और जब बुलाएंगे हमें, जहाँ बुलाएंगे हम पहुँचेंगे. आशा सर्कल आपके साथ खड़े,
1: आशा सर्कल.
4: थैंक यू सो सो
1: जी. Dr. Sir.
2: Last message, Sunny.
5: My only plea to the whole community is that this is about you, not me. Yeah. This is about making sure that our community can survive and keep moving forward. Yeah. And like, either do it for your parents or do it for your kids, because the change you bring is what other people will see and what they will want to do. So yeah. Please inspire.
2: Thank you. So, जाते जाते मैं सबको कनाडा डे की मुबारकबाद देना चाहती हूँ. इस कंट्री ने हमको बहुत कुछ दिया है, यहाँ पर बहुत कुछ है, ब्यूटीफुल पार्क्स हैं, ब्यूटीफुल पार्कवेज हैं, पाथवेज हैं, और साइकिल के पाथ्स हैं और वॉकिंग के पाथ्स हैं. मेक यूज ऑफ देम. दिस इज माय मैसेज टू एवरीबॉडी. हैप्पी कनाडा डे टू ईच एंड एवरी सिटीजन एंड एवरीबॉडी. सो मेक मोर यूज ऑफ every good thing you have here.
1: Yes. Very well said. So 90 Days Stronger ka jo hai apna event kal se shuru ho raha hai. It is available on iPhone. Uski YouTube apna ka jo link jo hai, aap jo app jo hai download kar le, aur aapke association ki taraf se kisi ne jo hai link bhi jo hai comment mein share kar diya on Facebook. So make sure download the app and start. Aap khali download to kar lo, phir कल नहीं परसों नहीं, बट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट इन नेक्स्ट 2-3 डेज 4 डेज. इसलिए इस फॉर 90 डेज, ऐसा नहीं कि आपने आज ही रात को स्टार्ट करना या तो जो है कल सुबह 6 बजे स्टार्ट करना, ऐसा भी नहीं है. एंड डू योर बेस्ट. इसी तरह जो है गाड़ी जो ऐसे से शुरू होती है, देयर इज नो वन परफेक्ट, एवरीवन मेक मिस्टेक, बट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, दैट्स द होल आइडिया. आपने अपने बच्चों को मिला, ये जो है बेटा बेटी भतीजा भतीजी वाइफ गर्लफ्रेंड जिसको मिला ना मिला, दोनों को मिलाओ, दोनों के साथ वॉक करो जाके, कोई नहीं देख रहा. But let's have fun with it. Yeah. I know it's very serious. But let's have a fun. ताकि जो है हम सबको मजा आएगा. और अगर आपने entertainment के लिए कुछ भी चाहिए तो फिर August 7 को मिलेंगे. अगर आप पूरी टीम को लेके आए, you know what? अगर आपकी पूरी टीम अभी देख रही सुन रही है, आपका पूरा जो ग्रुप है, if you buy a table of 10, I'll give you 10% off.
2: Wow.
1: अगर आप आशा सर्कल का ऐप जो है डाउनलोड करके लाए, you just show to Shama ji or anyone here. Then I'll give you 10% off. How's this?
2: Great. That's
1: great. Right? Yeah. So, yeah. Okay, good. So, yeah. Team banti, jo hai, community banti hai. Yeah. So, let's work together for our own self. Kabhi kabhi jo hai, apna jo hai selfish banna bhi zaruri hai. And I think this is your time to do it. So, inshallah, we'll see you tomorrow with very special edition on Pakistani dramas. Jo hai Shama ji bhi dekhte hungi, I'm sure. There we go. So, yes, so we'll talk about Pakistani drama tomorrow and now at 8 PM right here on next edition of Coffee with Jalal. Milte hain, bahut bahut shukriya sunne ka aur dekhne ka. Allah Hafiz.
6: The time is 9 PM.
7: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: 403-6708
1: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ 403-607-4208 ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ
2: साल हो गया गाना सुनती हूँ बस कैलगरी च कार लैंड दी फीलिंग आई ले जायो वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है ओना दे आउण तो पहला मेनू कार चाहिदा है
3: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल जिन्ना दी सलाह नाल हुण कार एक नहीं दो लवांगे पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई मैं सुनया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है
2: जी हां मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-6 16-2445 403-616-2445
4: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलया
5: की होया
4: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
5: ओहो रह गए ना फेर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 587-832-1208 या रमन वड़ैच 780-753-0001 सोनिक इंश्योरेंस
6: हेलो गोपी शुक्र है तू फोन चुक लिया जिद्दण दा नवा घर लिया सज्जन मित्र फोन चुकणो भी गए
7: ओ सारे डरदे नहीं चकदे ओना नु लगदा तू मूविंग ली कहूंगा कौन इन्ने भरे सामान नु हाथ पावे
6: ओ नहीं भरावा मैं इंज नहीं करदा आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालेयां नु एक फोन करीदा ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा सामान सही सलामत बिना किसे झंझट दे मूव कर जांदे आ
8: अपने घर जां ऑफिस दा सामान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नु अज ही कॉल करो 403-870-1790 403-870-1790 स्टार मूवी नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 10 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकदियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नु 403-617-2111 ते ते अमन गिल नु भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है
9: मान संग सप्ती
10: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: वे जिंदरा मेड़ आ मेरा भतीजा आ मेरी भैन दी कुड़ी ते आ मेरी भुआ दी ननान दी कुड़ी है
1: ओ तू सारा टब्बर इकट्ठा करी फिरदा
2: ओ पाजी ये असी नहीं JFS इमिग्रेशन वाले ने इकट्ठा करके दिता है JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप LMIA परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060